आपका चिंटू आ गया। चिंटू बड़ा हुआ है पापा, तुझे अपने कंधों पे कैसे उठाऊं?

गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार गंगापुर सिटी। सुबह के खूबसूरत समय और को सुरीला बनाने के लिए आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों, घड़ी में बज चुके हैं सुबह के 10। शुरू हो चुका है आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। इस कार्यक्रम में आपकी फरमाइश और आपके पसंद के गीत होंगे सबसे खास। तो देर किस बात की, फोन उठाए हमें कॉल कीजिए और बताएं आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप।

0: आपकी आवाज पूछेगी पूरे इलाके में और आपकी फरमाइश बजेगी आज की महफिल की जान। तो आवाज बढ़ाइए, दिल खोलकर मुस्कुराइए, तैयार हो जाइए आपका शानदार महफिल सजाने के लिए ला रहा है रेडियो डी एस। हेलो फरमाइश।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
4: 89.6 पे
3: रेडियो डीएस।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
5: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
6: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
7: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
6: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्ता शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
1: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
8: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। पीएस प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
9: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास। रिसेंटली मैंने क्रेस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है। मैं डीएस साइंस एकेडमी में 6th क्लास से प्री फाउंडेशन में हूँ। डीएस में आने से पहले फाउंडेशन क्या होता है उससे मैं बिल्कुल ही अनजान थी। यूँ तो बहुत सारे संस्थान फाउंडेशन पढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन जब वहाँ के टेस्ट पेपर्स और मटेरियल की तुलना की जाती है तो वह डीएस के मटेरियल से बहुत ही कम स्तर के प्रतीत होते हैं। डीएस में हमें राष्ट्रीय साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी ओलंपियाड्स की तैयारी करवाई जाती है, इसलिए डीएस में पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि यदि प्री फाउंडेशन लेना हो तो पूर्वी राजस्थान में डीएस एकमात्र संस्थान है जो इस कसौटी पर खरा उतरा है। आइए आईआईटी और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए डीएस से जुड़कर अपने बेहतर भविष्य को सुरक्षित कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक, रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नाम बताएं
1: पायल अग्रवाल
0: जी। पायल जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: चौमासा
0: जट चौमास तो लागू रहे।
1: ए
0: बिल्कुल सुना रहे मैम आपका, आपकी फरमाइश का ये गाना रेडियो डीएस में आपने कुल के। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके।

में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: हेलो
1: जी नमस्ते
0: सर। नमस्कार, नाम बताएं आपका।
1: जी ठंडीराम बोल रहा हूँ, हाँ बदरका से।
0: ठंडीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीजे से।
1: सर गाना जो बोले जिसके लिए सब छोटा उसी में दिल मेरा तोड़ा।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं ठंडीराम जी आपकी फरमाइश का गाना रेडियो डीजे से।
1: थैंक

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धड़कन।
3: रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

इस वक्त मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज, आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों, आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: गुलशन।
0: गुलशन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं गुलशन जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पे?
1: घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी दुम और सावन राजा कहाँ जाए तुम।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का गाना रेडियो डीएस में। कॉल किया, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
0: जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम तिल्लुखेड़ा से।
0: तुलसीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप?
1: काना आन पड़ी न तेरे द्वार।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश से गाना रेडियो डी एस में। कुल के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।

0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश पे।
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: अमित सैनी।
0: अमित जी कहाँ से बात कर रहे हैं? बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पे?
1: तेरे के आ रहा साईगा फिर मैं मर जाऊं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन, शहर का नया मैजिक रेडियो DS89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS89.6।
3: हेलो।
4: नमस्ते सर।
3: जी नमस्ते, नाम बताएं आपका।
4: शिवम।
3: शिवम कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: गंगापुर से।
3: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
4: घोड़ा से लंबी रेस का।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का ये गाना।
5: कबीरा चिर की पूछनी ते पूछिए तू, बाइया ते छोरिया ते पूछिए।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: संजय कॉलोनी।
3: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
4: बजिया सावन की जड़ी।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का एक गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
3: 89.6 पे
0: रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6। रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, में आपका रिव्यू दोस्त।

0: सरताज है।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर,
2: शहर का नया मैजिक। रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
4: हेलो।
5: हेलो
4: जी, नाम बताएं सर।
5: अंकित।
4: अंकित जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
5: मैं से बोला।
4: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
5: तुम ही आना।
4: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश रहेगा।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस। 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6। रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीच में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
4: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
5: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
6: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
5: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
7: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: अल्पित।
1: अल्पित जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: रामायण का सार।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6। रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त

0: का सरताज है।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
3: नमस्ते सर जी।
4: सर नमस्ते, नाम बताइए आपका।
3: हाँ सर, जम्मू से केशव शर्मा और सुषमा रानी।
4: कैसे हो जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस?
3: सर आज पहचान फिल्म का गाना है, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज है, जब सुन प्रयान करके है, कर लिए दिल की बात, आज मौका है।
4: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपको, आपकी
3: ओके।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो
2: जी, नाम बताएं सर।
1: हाँ भैया, योगेश जांगड़े पे मैं करा छत्तीसगढ़।
2: योगेश जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते थे?
1: रक्षाबंधन नजदीक है भैया, तो कोई प्यारा संगीत सुनवा दें।
2: ओके सर, सुना रहा हूँ आपको रक्षाबंधन से संबंधित कोई सा भी गाना रेडियो डीएस में। धन्यवाद
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: ममता।
1: ममता जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: गंगा से।
1: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: बापू ने राजा लिखना चाहूँ, माँ ने महारानी।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6।
3: हेलो जी, नाम बताएं सर।
4: अनिका शर्मा।
3: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
4: थोड़ी मेहंदी लगने से पहले।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
3: हेलो हेलो
4: हेलो, नमस्ते सर।
3: सर नमस्कार, नाम बताएं आपका।
4: लतीफ मोहम्मद रैना कश्मीर से।
3: लतीफ मोहम्मद रैना कश्मीर से, बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से।
4: राजा हिंदुस्तानी कोई भी।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश से, बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कुल किया, धन्यवाद।

0: जी नाम बताइए।
1: अंकित।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: तो गंगापुर सिटी से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: अपने जो अपने
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: दीपेंद्र।
1: दीपेंद्र जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी से।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: रात के शिकारी।
1: सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश।
2: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
2: अतर सिंह गुर्जर। अतर सिंह गुर्जर
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर सिटी से।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: नीरज पे एक सूट।
3: गुजारा गुजारा गुजारा।

0: हेलो।
1: हेलो। हाँ,
0: हाँ जी मैम, क्या आपका कहाँ
1: गोविंद प्रसाद
0: से बात कर रहे हो?
1: उल्लापुर से। कल
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: सन्यासी मंदिर में।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 11:45 का। इस वक्त आप मेरे साथ ट्यून करें 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाई 99.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर? ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, कर लीजिए।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: हेलो।
4: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: कपिल।
4: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: गंगापुर सिटी।
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: तुम्हें देख के सांसें चलती है।
4: और क्या सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना?

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: समर,
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: तुम
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मेरे हो।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर मेरा।

0: मेरा नाम सिमरन है।
1: कहाँ से बात कर रही
0: हूँ? गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: वो वाला छोरा था सीधा साधा।
1: ओके सर, सुनिए आपकी फरमाइश करिएगा ना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: रवि सैनी।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: नासिर कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: कॉलेज वाली छोरी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करी गाने।
2: 89.6 पे रेडियो डीएस
3: सुनते रहिए, दिल से दिल तक। 89.6 डीएस एफएम पे
4: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
5: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस
4: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
5: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: जय इस छोरे गल्ला सेटिंग हो जा
1: जी साजा। छोरा तो घना एंडी है।
2: न्यू बता।
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
4: लेखराज सैनी।
3: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
4: कानपुर बड़ौदा।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: चांद के पार चलो।
3: वो किसको सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर? ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: पन्नू
1: कहाँ से बात कर रहे हो? तो कहाँ से बात कर रहे हो?
2: मैं करौली जिला से बात कर रही हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
2: हेलो
1: हाँ मैम, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: हेलो चांद रात में गोली चला।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपको भी धन्यवाद।
1: यू वेलकम।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम हरिओम सैनी है, खानपुर बड़ौदा से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: मैं दिलवाले फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ, वो एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा ना रेडियो से कॉल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी मैम, क्या आपका कहाँ
1: मेरा नाम हरी सिंह है।
0: से बात कर रहे हो?
1: मैं करौली से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: मासूम शर्मा वाला।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नाम बताएं सर।
1: हिमांशु बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं करौली जिले से बात कर रहा हूँ।
0: बताएं हिमांशु जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: हम सुनना चाहते हैं सिद्धू मूसे वाले का जो गैंगस्टर वाला सॉन्ग है ना, वो वाला।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।
2: 89.6 हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट।
3: कल कोर्ट में गवाही देना बहुत जरूरी है, बेगुनाहों को सजा नहीं होनी चाहिए मेरे भाई।
4: दो चार बेगुनाह मर गए तो क्या हुआ, तुम्हारे इस भैया जी की वजह से तुम्हारे घर में चूल्हे जल रहे हैं।
5: किसी भी तरीके से वो कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए, जो मर्जी हो जैसे मर्जी हो उसे रोकना है।
6: तू चिंता मत कर, कल मैं पहुंचाऊंगा तुझे कोर्ट।
7: नहीं पहुंचेगा भैया जी।

0: मशीन दिखा के आगे दिखे, रोटी नहीं खाने गए दिखे, मशीन
1: नहीं
0: दिखे,
1: रोटी खा के ना दो के फिर मशीन को भी
0: आप लोगे ना, मैं मशीन दिखाने जा रहा हूँ।
2: सिंगर मासूम शर्मा एक बार फिर से चर्चा में है।
3: अगर मासूम शर्मा
4: मासूम भाई आप पे आरोप लगते हैं गानों से लोग गुंडे बनते हैं तो इसके बारे में क्या कहना है?
5: रेडियो DS
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
6: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
5: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
6: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
5: 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
5: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: दोस्तों अभी आपने सुना लू फरमाइश कार्यक्रम। लू फरमाइश कार्यक्रम को यहीं समापन करने का समय आ चुका है। आपके ऋषि भाई को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दोस्तों दोपहर का एक बज चुका है, दोपहर के एक बजे आप सबको पता है आपका मनपसंद फेवरेट कार्यक्रम लेकर हाजिर रहूँगा थोड़ी देर में, नए तराने कार्यक्रम।

0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
1: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
1: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
3: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।

सोचो, तुम्हें एक किताब मिलती है जो एक अननोन लैंग्वेज में लिखी हो, जिसमें अजीबोगरीब पौधों की तस्वीरें बनाई गई हों, और जिसका मतलब समझने की कोशिश में दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट भी फेल हो गए हों। यही है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट, दुनिया की सबसे रहस्यमय किताब। 1912 में एक रेयर बुक्स डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच को यह किताब इटली के एक पुराने मॉनेस्ट्री से मिली थी। इस किताब के अंदर 240 से ज्यादा पेज हैं, पर आज भी कुछ पेज मिसिंग हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग के बाद साइंटिस्ट्स ने कंफर्म किया कि यह किताब साल 1400 से 1440 के बीच लिखी गई थी, यानी लगभग 600 साल पुरानी है। पर असली रहस्य शुरू होता है इसके कॉन्टेंट से। आखिर किताब के अंदर क्या है, आइए जानते हैं। हर पेज पर एक अननोन स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ये लैंग्वेज दुनिया के किसी भी कल्चर, किसी भी सिविलाइजेशन से मैच नहीं करती। इसमें ऐसे सिंबल्स और अल्फाबेट्स हैं जो इंसान ने कभी पहले नहीं देखे, और तस्वीरें कुछ अजीब और अनोखे पौधों की बनाई गई हैं, जो रियलिटी में कहीं मौजूद ही नहीं। कुछ पेजेस पर एस्ट्रोलॉजिकल डायग्राम्स हैं, ऐसे स्टार्स और गैलेक्सीज जो मिडीवल यूरोप के लोग जानते ही नहीं थे। सबसे हैरान करने वाली बात, कुछ इलस्ट्रेशंस में नेकेड वुमेन स्ट्रेंज ग्रीन लिक्विड में स्नान करती हुई दिखाई गई हैं, जिनके आसपास ट्यूब और पाइप्स जैसी चीजें बनी हैं, जैसे किसी अननोन टेक्नोलॉजी का स्केच हो। कुछ लोग मानते हैं कि ये किताब एक एलियन सिविलाइजेशन का मैसेज है जो हम समझ नहीं पा रहे, और कुछ लोग मानते हैं शायद ये एक ऐसी एंशंट सभ्यता का रिकॉर्ड है जो खत्म हो गई और उसकी लैंग्वेज हमारे लिए हमेशा के लिए खो गई। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि शायद ये एक मेडिवल मेडिकल गाइड है जो विमेंस हेल्थ और हर्बल मेडिसिन पर लिखी गई थी, पर अगर ऐसा होता तो लैंग्वेज डिकोड हो जाती। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि शायद ये एक फेक मैन्युस्क्रिप्ट है जो मेडिवल जमाने में पैसा बनाने के लिए लिखी गई। पर सवाल उठता है, एक फेक किताब में इतना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और सिस्टमैटिक सिंबल्स क्यों लिखे जाते? 100 साल से ज्यादा हो गए पर इस किताब का कोड अब तक ब्रेक नहीं हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी के बावजूद वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक अनसॉल्व्ड पजल है। और सबसे बड़ी बात, हर पेज देखने पर लगता है जैसे इसमें कोई हिडन नॉलेज है जो इंसान से छुपाया गया हो, जैसे ये किताब किसी और दुनिया की साइंस हो। नंबर 2, नाजका लाइंस। सोचो, एक ऐसा रेगिस्तान जहां मिट्टी और पत्थर के बीच जमीन पर खींचे गए लकीरों से इतने बड़े बड़े डिजाइन्स बने हैं कि उन्हें सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। ये हैं नाजका लाइंस, जो पेरू के नाजका डेजर्ट में पाए गए हैं। जमीन पर चलने वाले इंसान को ये लाइंस बस रैंडम और अजीब सी खुदाई लगती हैं। लेकिन जब 1930 के आसपास पहली बार एयरप्लेन्स ने नाजका के रेगिस्तान के ऊपर से उड़ान भरी तो उन्होंने एक हैरतअंगेज खुलासा किया। वहां पूरे डेजर्ट में 300 से ज्यादा ज्योमेट्रिकल शेप्स, एनिमल्स और मिस्टीरियस फिगर्स बने हुए थे। सोचो, किसी ने एक इंसान की शक्ल, एक मंकी, एक जायंट हमिंगबर्ड और एक स्पाइडर रेगिस्तान की जमीन पर खींच दिए, और वो भी इतने बड़े स्केल पर कि उन्हें सिर्फ आसमान से ही समझा जा सकता है। ये लाइंस नाजका सिविलाइजेशन 200 BCEE से 600 CEE के लोगों ने बनाई थी।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडीइंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ DS इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक JEE एंड NEET। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
3: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
4: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
3: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
5: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
6: रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
7: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो DS 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
8: हर बीच में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

रेगिस्तान की अपर लेयर एक तरह की रेडिश ब्राउन मिट्टी से भरी है। अगर इस लेयर को हटा दिया जाए तो नीचे से एक हल्का ग्रे व्हाइट सरफेस निकलता है। नाजका के लोगों ने इसी सरफेस को एक्सपोज करके लाइंस बनाई, लेकिन सवाल यह है, इतने बड़े और परफेक्ट डिजाइंस उन्होंने बनाए कैसे? उस टाइम कोई ड्रोन नहीं था, कोई एयरप्लेन नहीं था। जमीन पर खड़े होकर इंसान को कभी समझ ही नहीं आता कि पूरा डिजाइन क्या बन रहा है। कई स्कॉलर्स कहते हैं कि नाजका लाइंस एक तरह का एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर थी। ये फिगर्स स्टार्स, कॉन्स्टेलेशंस और सोल्स्टिस के टाइम अलाइन होते हैं, मतलब शायद उनका रिलेशन आसमान के तारे और प्लैनेटरी साइकिल से था। एक थ्योरी के मुताबिक ये लाइंस एक तरह की सेरेमोनियल पाथवेज थी, मतलब लोग इन पर चलकर रिचुअल्स करते थे, शायद पानी के लिए प्रेयर्स, क्योंकि नाजका एक बहुत सूखा एरिया है। सबसे पॉपुलर और थ्रिल वाली थ्योरी ये है कि ये लाइंस किसी एलियन सिविलाइजेशन के लिए बनाई गई थी, एक तरह के लैंडिंग मार्क्स जिससे वो आसमान से आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि उस तरह की स्केल और परफेक्शन बनाना इंसान के लिए उस टाइम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक तरह का अंडरग्राउंड वाटर मैप था। नाजका के लोग शायद दिखाना चाहते थे कि कौन से एरियाज के नीचे पानी अवेलेबल है। नाजका लाइंस आज भी वैसे ही सेफ हैं जैसे 2000 साल पहले बनाए गए थे। रेगिस्तान का ड्राई क्लाइमेट और विंड्स की कमी की वजह से ये लकीरें कभी मिटती नहीं। यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया, लेकिन मिस्ट्री अब तक वही की वही है। क्या ये डिवाइन प्रेयर्स थी, एक कैलेंडर था, या फिर एलियंस के लिए मैसेज? सोचो, एक पूरा सिविलाइजेशन ऐसे डिजाइन बनाता है जो खुद जमीन से कभी देख ही नहीं सकता, मतलब उन्होंने ये किसके लिए बनाया था? नंबर 3, पिरामिड्स ऑफ गीजा। सोचो, एक ऐसा स्थान जो हजारों सालों से दुनिया के सबसे बड़े राज अपने अंदर छुपाए बैठा है, गीजा के पिरामिड्स। ये पिरामिड्स सिर्फ एक मकबरा या आर्किटेक्चर का कमाल नहीं है, बल्कि एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री का समुद्र है। सबसे ज्यादा डिस्कशन होती है ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू के अंदर छुपे हुए सीक्रेट चैम्बर्स के बारे में। जब इस पिरामिड का कंस्ट्रक्शन हुआ था लगभग 4500 साल पहले, तब उसे इतनी एक्यूरेसी के साथ बनाया गया था कि आज के मॉडर्न इंजीनियर्स भी हैरान हो जाते हैं। 2017 में एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट स्कैन पिरामिड्स मिशन ने एक ऐसा डिस्कवरी किया जिसमें म्यून रेडियोग्राफी टेक्निक का यूज हुआ। ये एक तरह की कॉस्मिक रे इमेजिंग है जो वॉल्स के अंदर छुपे स्पेसेस को डिटेक्ट करती है, और तब साइंटिस्ट्स ने कंफर्म किया कि खुफू के पिरामिड के अंदर एक बड़ा हिडन वॉइड एग्जिस्ट करता है, लगभग एक कमर्शियल एयरप्लेन जितना लंबा। अब सवाल उठता है, ये चैम्बर किस काम का था? कुछ लोग कहते हैं कि ये एक कंस्ट्रक्शन कॉरिडोर था जो पिरामिड बनाते वक्त इस्तेमाल हुआ और बाद में सील कर दिया गया। दूसरे रिसर्चर्स मानते हैं कि ये एक रॉयल बरियल चैम्बर हो सकता है जिसमें अभी तक किसी को घुसने का मौका नहीं मिला, और कुछ थ्योरिस्ट्स का मानना है कि ये चैम्बर एंशियंट टेक्नोलॉजी या फराओ के खजाने का सीक्रेट वॉल्ट हो सकता है। और मिस्ट्री और गहरी तब हो जाती है जब ये पता चलता है कि पिरामिड के अंदर आज तक ऐसे नैरो शाफ्ट्स और कॉरिडोर्स भी हैं जिनका पर्पज किसी को समझ नहीं आया, जैसे एक शाफ्ट डायरेक्टली स्टार्स की अलाइनमेंट में बना हुआ है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इजिप्शियंस का एस्ट्रोनॉमी और आफ्टर लाइफ के साथ गहरा कनेक्शन था। पिरामिड्स के अंदर के चैम्बर्स का राजा की अभी तक पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ। आज भी वहां एक्सपेरिमेंट्स और स्कैनिंग चल रही है, लेकिन अंदर फिजिकली एंटर करने की परमिशन नहीं दी जाती क्योंकि वो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है। सोचो, अगर एक दिन ये चैम्बर्स ओपन हो गए तो क्या हमें एक खजाना मिलेगा, या फिर ऐसी नॉलेज जो इंसान की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दे? पिरामिड्स के अंदर छुपा ये सीक्रेट चैम्बर अभी भी दुनिया का एक ऐसा राजा है जो हर जनरेशन को चैलेंज करता है। नंबर 4, ईस्टर आइलैंड मोआई स्टैच्यूज। पैसिफिक ओशन के बीच एक छोटा सा आइलैंड है ईस्टर आइलैंड, और यहीं खड़े हैं वो अजीब और बड़े बड़े मोआई स्टैच्यूज जिन्हें देखकर हर इंसान हैरान रह जाता है। वहां जमीन पर 13 फीट से लेकर 30 फीट तक के पत्थर के इंसान जैसे चेहरे खड़े हैं, कुछ का वेट 80 टन तक है, और ये सब स्टोन टूल से बनाए गए थे, मतलब ना कोई मशीन ना आयरन, सिर्फ प्रिमिटिव टूल्स। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इतने बड़े पत्थर काटकर उन्हें

0: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास। रिसेंटली मैंने क्रस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है। मैं डीएस साइंस एकेडमी में 6th क्लास से प्री फाउंडेशन में हूँ। डीएस में आने से पहले फाउंडेशन क्या होता है उससे मैं बिल्कुल ही अनजान थी। यूँ तो बहुत सारे संस्थान फाउंडेशन पढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन जब वहाँ के टेस्ट पेपर्स और मटेरियल की तुलना की जाती है तो वह डीएस के मटेरियल से बहुत ही कम।
1: ये सच है कि दिल को आपसे शिकायत है, मगर ये भी उतना ही सच है कि दिल को आपसे बेपना मोहब्बत है।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को अपने मोबाइल प्ले स्टोर पर जाकर और सर्च करें रेडियो डीएस 89.6 और हमारे रेडियो ऐप को इंस्टॉल कर आप आनंद ले सकते हैं गंगापुर सिटी का तड़का एफएम चैनल का, जो मनोरंजन का सरताज है।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

106 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का में आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों आप हमारे इस चैनल को अपने मोबाइल प्ले स्टोर पर जाकर और सर्च करें रेडियो डीएस 89.6 और हमारे रेडियो ऐप को इंस्टॉल कर आप आनंद ले सकते हैं गंगापुर सिटी का तड़का एफएम चैनल का, जो मनोरंजन का सरताज है।

0: सही।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।

0: मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
1: दोस्तों अभी आप इस वक्त मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों 1:59 यानी 2 बजने वाले हैं। इस कार्यक्रम को यहीं विदाई देते हुए कल इस समय फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: के दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: चलिए दोस्तों कार्यक्रम सुनते हैं भूली बिसरी यादें।
3: आप इस वक्त मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज, आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

दोस्तों वक्त हो चुका है 2:46 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीच में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

दोस्तों वक्त हो चुका है, 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन का 99.6 रेडियस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू वे गाने का 89.6 रेडियस पर।

0: नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी नशे सी चढ़ गई।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल 89.6 डीएस एफएम पे हर बीच में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 4 बज चुके, इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू वे गाने का, थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल कर अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं, हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।
3: अभी नमस्कार
4: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
3: मैं बोल रहा हूँ दशहरा मैदान से।
4: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: गाना है रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी।
4: कौन सा सर?
3: रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी।
4: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
3: लेकिन आज आपने भूले बिसरे याद के अंदर बहुत बेहतरीन गाना सुना है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: आदरणीय पलक दीदी शादा नमस्कार।
3: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
2: मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोवर्धन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं? बारिश हो रही क्या?
3: सर मैं ठीक हूँ, बारिश का मौसम हो रहा है, थोड़ा ठंडा हो चुका है अब गंगापुर में।
2: जी यहाँ मथुरा वृंदावन भी आज सुबह से बारिश हो रही है, रिम झिम बूंदा बांदी होती है।
3: जन्माष्टमी आ रही है ना, राखी के बाद जन्माष्टमी आ रही, तो ठंडा मौसम भी तो होना जरूरी है। हाँ जी बताइए कौन सा।
2: दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है काजल।
3: हाँ जी,
2: गाने मेरे चंदा मेरे भैया तेरे बदले कोई चीज न लूं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: जी नमस्ते
2: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: हाँ तंजराम गुजर बोल रहा हूँ, गांव भद्रका से।
2: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गान के बोला 18 बरस की तू आई।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: सुनील वानिस।
1: कहाँ से बात कर रहे सर?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: तो तेरी लत लग गई जगी तड़पाया ना सर।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: ब्राज बोल।
0: कहाँ से बात कर रहे हो ब्राज जी?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: 47 फैल करे।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। पतली पतली।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: जयेश।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: गंगापुर।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मासूम शर्मा कोई सा भी।
1: मासूम शर्मा का कौन सा सर?
0: कोई सा भी।
1: समझ में नहीं आया थोड़ा।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: एस माली।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: हाँ,
0: कहाँ से बात कर रहे हो मैम?
1: सैनी कॉलोनी गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: स्त्री टू गर्ल।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश कर दूंगा।
2: वो नहीं आने वाली। वो बेवफा निशलावती।

0: नहीं बेटा, प्यार में। हाँ
1: नमस्ते मैम।
2: नमस्ते, नाम क्या है आपका?
1: कोमल गुर्जर।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: खटान नगली गंगापुर सिटी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: उसका मेरे यार कचाला।
2: कौन सा?
1: उसका मेरे यार कचाला, चाला काली थार में।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। हेलो,
3: रेडियो DS
4: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: सुनो, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ तुम ले चलोगे?
1: अजी कह के तो देखो।
0: जहाँ भीगा भीगा मौसम हो, हम हो और तुम हो,

0: हेलो। हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: हेलो,
0: नाम क्या है आपका?
1: मोनू।
0: कहाँ से बात कर जाओगे?
1: मारुति ले रहे रोड फाड़ गए।
0: ओके सर।

0: जी नाम क्या है सर आपका?
1: पवन।
0: कहाँ से बात कर रही?
1: गंगावर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: पागल।
0: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश करिएगा।
2: अज 14 साल बाद मुड़िया हाँ उन आरामां ते देख के उही हवावां क्यों अज वधियां सावां ने। काश जे मिल जे तू ता जिंदगी सफल हो जावे, तू गीत मेरे दा कला कला लफ्ज हो जावे।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: अरविंद।
0: कहाँ से बात कर रहे?
1: राधे की है।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: बरसात है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

तेरे लिए मेरा प्यार तेरा भी मोहताज नहीं, मरते दम तक रहेगा, सिर्फ आज नहीं।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरती
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डी एस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरती पर
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरती पर
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: नया मैजिक रेडियो डी एस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरती पर
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डी एस 89.6 गंगापुर सिटी की धरतर
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

प्रेम की परिभाषा बताते हुए कहा, जंगल में एक हिरण और हिरणी का जोड़ा रहता था। एक दिन शिकारी उस जंगल में आया और शिकार पकड़ने के लिए जंगल में एक फंदा लगाया।

ही उस हिरण का पांव उस फंदे में फंसा, वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनते ही सारे जीव जंतु और जानवर जंगल में भाग गए, परंतु प्रेम के धागों से बंधी उसकी हिरणी उसको छोड़कर नहीं गई। उसके पास खड़ी होकर भगवान से करुणा पुकार करने लगी, भगवान के आगे रोने लगी, मारे पिया जीरा प्राण बचा, आ हिरणी हरिसु अर्ज करे।

धीरज मत खोए, तू तो कूद जंगल में रड़ जा, हरी करे सो होए। हे प्यारी, जो भगवान ने लिखा है वही होगा, तू मेरे लिए दुखी मत हो, कम से कम तू अपने प्राणों को बचाकर भाग जा। वे शिकारी अपने शिकार को ढूंढता हुआ आता ही होगा। वे हिरण बार बार हिरणी से निवेदन करने लगा, तू मेरे साथ अपने प्राणों को मत गवा प्यारी। पर वे हिरणी एक नहीं मानी और कहा कि हे प्रियवर, शिवाय तुम्हारे मेरा इस जंगल में क्या है। और भगवान के आगे रोते रोते पुकार करने लगी, हे प्रभु, तीन पांव पर खड़ी मृगली हरिसु हेत लगाए, और हरी रोज सिंहासन डोल्यो, बावरिया ने विष खाए। हिरणी की आंखों में आंसू देकर और अपने प्रीतम के लिए अपार प्रेम देकर भगवान को बड़ी दया आई और उसकी पुकार सुनी, और धीरे धीरे हिरण के फंदे खुलने लगे। तब कबीरदास जी महाराज ने कहा,

उग्यो हरिए बाग में खुशी भई वनराय, और बांस उग्यो डर ढूंग रहे थरक रही वनराय। जहां एक तरफ चंदन के उगने से वन में चारों ओर खुशी और आनंद का माहौल हो गया, कि अपनी शीतल छाया के साथ साथ दिव्य सुगंध से पूरे वन को महकाएगा। वही दूसरी ओर बांस के उगने से वन में चारों ओर उदासी छा गई, कि एक दिन ये नुगरा बांस खुद जलेगा और पूरे वन को जला देगा। और धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, जिसका डर था वही हुआ, उसी बांस के कारण जंगल में आग लग गई।

लो लागी डावे डूंगरे मिल गई झाड़ो झाड़, और तो पंखेरू सब उड़ गया और हंस लो बैठो डाल। जंगल में चारों तरफ आग बड़ी भयंकर फैल गई, सारे जीव जंतु पशु पक्षी अपनी अपनी जान बचाकर भाग गए, पर एक हंस आग की लपटों को चीरता हुआ चंदन की डाली पर बैठ गया। मृत्यु से बिना डरे भाव के साथ अपनी डाली से लिपटा हुआ देख चंदन हंस से बोल पड़ा, कहा, हे हंसराज, मेरी तो जड़ें बड़ी पतालों में गहरी हैं, इसलिए इस आग में जलने को विवश हूं, पर तुम्हें तो भगवान ने पंख दिए हैं, अपने इन पंखों का इस्तेमाल कर और इस जंगल और आग को छोड़कर अपनी जान बचाकर चला जा। पर हंस आंखों में आंसू लेकर बोला, हे चंदन, तेरे फूल खाए, तेरे पत्ते खाए, तेरी डाली डाली खेले, तेरी छाया में अपना जीवन बिताया, और आज इन आग की लपटों को देखकर, आज इस मृत्यु के भय से अगर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं तो मेरा प्रेम कैसे।

घड़ी को देखकर मैं अगर तुझे छोड़ के चला जाऊं तो मेरी मित्रता कैसी और मेरा प्रेम कैसा। एक तरफ हंस और चंदन का अटूट प्रेम देखकर भगवान की आंखों में आंसू टपक पड़े और इस प्रेम के लिए भगवान ने उस जंगल में इतनी भयंकर बारिश कर दी कि चारों तरफ खुशी का माहौल हो गया और आग की लपटें भी बुझ गई। साहेब कबीरदास जी ने कहा,